कौन गर्भ ना आयो। ऐसे दीन दयाल सतगुरु बाणी के बोहेथ शांति दे पुंज शहीदां दे सिरताज पंजवें पातशाह

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गौर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रीख पीख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहाण गणिजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत सेव रहता गुर पूरा पायो बड भागी लेव लागी मेदन भर सहता पै भंजन पर पीर निवारन कल सहार तो हे जस बकता कोल सोढ़ी गुर रामदास तन धर्म तुझा अर्जन हर भगता फल द्रुम गुर सिख संद गत आद अंत बिस्माद अंत अनंत न जानिय आद परम परमाद आद परम परमाद नाद मिल नाद शब्द धुन सललह सलल समाई नाद सरता सागर सुन नरपत सोत नृप होत जोत गुरमुख गुण गुर जान राम नाम परसाद पहे गुर ते गुर अर्जन हर का नाम हृदय नित त्याई

हर नाम पदार्थ नानक मांगे, अश्चर्य अश्चर्य गत विस्मद विस्माद, अद्भुत परमद्भुत पही

गए मसखत काल नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

पौड़ी वटी हो वडाया पार तेरा मर्तबा रंग रंग नेक न जापन करतबा जी आंदर जियो सब से जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा घर पला तेरे कार्य आनंद बधाई तुद कर मान महत्ता तेज आप।

जब लो नहीं पाग लीलार उदय, तब लो प्रमति फिरते बहुत आयो। कल को समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछताया। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन

तप तप खपै बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। बहुता बोलन चखण होए, विण बोले जाने सब सोए। रहा जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजै पवन आखै सब जाए। जीता मोह प्रीत स्वाद, सबा कालख दागा दाग, दाग दोष मोहे चलिया लाए, दरगह बैसन नाहीं जाए, कर्म मिले आखण तेरा नाओ, जित लग तरना होर नहीं थाओ। जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्वदातार, कर्म मिले आखण तेरा नाओ, जित लग तरना
कठोर नहीं थाओ। जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्वदातार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परि एक गुण नाही, अमृत छाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख शरणाई। सो कहौ टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सहु कुर सहु चटियै। तुद डिठी सच्ची पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटियै। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पातशाहु, सिर साहां दै साहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

तक न पाया जाए। गौर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभ एको सोए। गौरमति घट प्रगट होए,

मेले मन मान्या वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्ब रखिया गुर दयाल है भय दुख विनाशन है भगत वछल अनाथ नाथी शरण नानक पुरख अचुत बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाऊ राख लिए तिन रखनहार सब ब्याध मिटाई कहो नानक कृपा पही प्रभ पय सहाई सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते का हुए बिचारू तित कर गाव हो सोहेला सिवरहो सिर जनहारो तुम गाव हो मेरे निरभउ का सोहेला हौ वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पावह तेल देह सज्जन असी सड़िया ज्यो होवै साहिब स्यो मेल कर कर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छे अकार छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ विश्व चसिया घड़िया पहरा थित्ती वारी माहो हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्दवा जंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तो ही काओ सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बेन सहस तव गंध एव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोई तिस द चानण सब मह चानण होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आनंदनो मोहे आही प्यासा
ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕਉ ਹੋਏ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੀ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲੇਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੇ ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੇ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੇ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲਹਿ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੀ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੀ। ਹਾਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਈਹਾ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਧ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਈ ਪਿਆਵੈ ਇਹ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ।

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा नाम देवायो, सर्व सुकर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई सलो।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुए दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर, जिनी नाम ते आया गए मश

होड़ी ना उतरा निरंकार है न ले अनर्क न जाइए जियो पिंड सत्य सदा देखा जे अगवाई है जे लोड़ है चंगा अपना करपन होने सदाइए जे जरवाना पर हरे जर वेस करें दिया है को रहना पर्या पाई है को रहना पर्या पाई है।

0: वाले हो जिन तीसो पार पाया। कहो नानक करते क्या बता जो किस करना सो कर रहे महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जेको जाने भयो नानक तक।

अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण करनं सत गुर गुर सेव अलख।

0: सब सदका।
1: वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर परगासा, आपे जल आपे थल थमन, आपे किया कट कट बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सबे बिचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना, माने प्रेमाद क्रुद्रा देके, काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाये परमारथ, सत संगत से ते मन खचना, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना।
2: अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने है, शिव बिरंच धर ध्यान निते जिस बेद बखाने, निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई, नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रस नारस है, श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित है बसै।
3: अब राखो दास पाठ की।

0: लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखट फारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत बस्तर दीन बहुत साल, सो दामा अपदाते राखिया, गन का पर्द पूरे तहकाज। श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए, राखो दास पाठ की लाज।
1: श्री गुरु साहिब सभी ऊपर करी कृपा, सत युग जिन ध्रुव पर। श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर धरियंग, अलख रूप जी रखिया ना जाई, साधिक सिद्ध सगल सरनाई। गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो। गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोए। गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ, गुर बिन मुक्त ना होए। गुर नानक निकट बसे बनवारी, तिन रहना थाप ज्योत जगतारी। रहने पंथ धर्म का किया, अमरदास पल्ले को दिया। तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो, हर का नाम अखै निध अप्यो। अप्यो हर नाम अखै निध चोह जुग, गुर सेवा कर फल रहियं। बंदे जो चरण सरण सुख पावे, परमानंद गुरमुख कहियं।

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर था आयात बड सो पर सदा सब विद रत नागर।

सहन सुसहज सुपाय दर्शन परसे गुरु क जन्म मरण दुख हुआ सिफ दुख संबंधी नूर अरसह कुरसह तुदृठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह हांद जिस पास बैठिया सोही सबना दावेसा सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोही सबना दावेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पहला तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे पेखारी जियो मैं क्या मांगो किश थिर ना रहाई हर दीजै नाम प्यारी जियो तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे पेखारी जियो मैं क्या मांगो किश थिर ना रहाई हर दीजै नाम प्यारी जियो घट घट रब रहया बनबारी जल थल मही अल गुप्त वरत गुर शब्दी देख निहारी जियो रहाओ मरत पयाल आकाश दिखायो गुर सतगुर कृपा धारी जियो सो ब्रह्म अजोनी है पी होनी कट पीतर देख मुरारी जियो जन्म मरण को इहो जग बपड़ो इन दूजे भगत विसारी जियो सतगुर मिले ता गुरमत पाईए साकत बाजी हारी जियो सतगुर बंधन तोड़ निरारे
ਬਹੁੜ ਨਾ ਗਰਬ ਮੰਝਾਰੀ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਿਰਾਰੇ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਗਰਬ ਮੰਝਾਰੀ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਮਾਂਗੋ ਕਿਛੁ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ।

सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रे आयत देग तेग फतेह बिरद की पैज